0: गोंय येयला मरे आनी एक कॅसेट आल्बम करता समवेले बरसानी एंड द आल्बम नेम इज फ्रिक
1: नॉन परलारमी प्यू द अमोरे से नॉन साय कोझा इल पेकाटो.